घर आंगन पड़ने भय होशियारी अपना जोखिम टारने भय पारी पारी झाड़ी बुटन घास रखन साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानून बाघ भालू बैराती चितुआ पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Time check. Studio FM. Studio time.
2: It's 10 a.m. We have to go 10
0: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press. सोलु दुकुन नगर पालिका पास सोलु कुंभू.

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सुरु एफएम स्टुडियो टाइम
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: Raio Rádio em sono é bem contada.
1: Time check. City FM. Studio time.
2: It's 3 p.m.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूध को नगर पालिका पांच सोलू खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुधकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना। अदली सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाह होने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसै को प्रलोभन नपरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील कर सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आए में गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोजी संपर्क राख्ने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर।
2: मानव देश बिखन तथा ओसार पसार जघन्य अपराध हो।
1: तपाईंकै चिन्जानको व्यक्ति वा अरू कसैले रोजगारी दिने नाममा प्रलोभन नपारी लड़ाई फकाई अवैधानिक रूपमा विदेशमा पुर्याउलान् होस गरौं। कसैले यस्तो लोभ देखाए घर परिवार आफन्त र वडा कार्यालयमा जानकारी दिऊ।
2: देश बिखन र ओसार पसारबाट बचौं, सिप सिकौं र स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनौं। मानव देश बिखन तथा ओसार पसारको रोकथाम गरी नागरिक दायित्व पूरा गरौं।
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
0: कर प्रिंट रुजुकर को रकम र सवारी साधन को नंबर एक गणेश सम्बन्धी सूचना।
3: आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरू, तपाईले आफ्नो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउनु पर्ने सवारी कर नवीकरण दस्तुर लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोचर गर्न अघि सवारी कर तथा दस्तुर एक तथा कर बुझाए पछि प्राप्त हुने बिलमा आफूले बुझाए कर को रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
0: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर।
4: धूम्रपानका कारण आज मलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको छ। यही गल्तीका कारण केही दिनमा मेरो जीवन समाप्त हुनेछ।
5: त्यही धूम्रपानका कारण मेरो पहिलो बच्चा अपाङ्ग जन्मियो, दोस्रो बच्चा पनि जोगाउन सकिन।
4: मलाई मुखले घाटेको क्यान्सर छ, बाँचेर पनि म मरे तुल्य भए। म अलिकति पनि हिँड्न सक्दिन, श्वास प्रश्वासमै समस्या देखियो।
6: धूमपान गर्न छोडौ, स्वस्थ जीवन बाँचौ।
7: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सांचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 5 पीएम साँझ को 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Sony FM. In studio time.

0: Sound check. Sorry, I'm saying. The studio time.
1: It's 9 p.m. Ratko Novadu. टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोनू दूध कुंड नगर पालिका पांच सोनू खुम्बू
2: सड़क प्रयोग गर्दा दिन दिन सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौं सड़क सीमा में अस्था एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौं सड़क को नाली ठल तथा पानी निकास बंद हुन नदिउं सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गराउं सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं सवारी साधनमा खुम्बिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं सड़कको क्षमता भन्दा बढी भाग प्रयोग नगरौं जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काट्ने गरौं सड़कको तत्काल मजबुती मार्ग गर्ने गरौं यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश